नमस्कार, मेरा नाम कल्पित है। मैं भारत से हूँ। मैं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में कंप्यूटर साइंस में अभ्यास कर रहा हूँ और आप रेडियो KHOE 90.5 FM फेयरफील्ड आयोवा USA से सुन रहे हैं। हेलो, माय नेम इज कल्पित। आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम ए स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस एट महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो KHOE 90.5 FM इन फेयरफील्ड आयोवा USA।

नमस्ते, मेरा नाम कुश है और मैं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट के साइंस ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट कॉन्शियसनेस बेस्ड एजुकेशन पर आधारित है। विश्व रेडियो KHOE 90.5 FM फेयरफील्ड आयोवा USA को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, माई नेम इज कुश and I'm a graduate student in the Science of Creative Intelligence program here at Maharishi University of Management, the home of consciousness-based education and world music. Thanks for listening to World Radio KHOE 90.5 FM, Fairfield, Iowa, USA.

नमस्कार, मेरा नाम कल्पित है। मैं भारत से हूँ। मैं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में कंप्यूटर साइंस में अभ्यास कर रहा हूँ और आप रेडियो KHOE 90.5 FM फेयरफील्ड आयोवा USA से सुन रहे हैं। हेलो, माय नेम इज कल्पित। आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम ए स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस एट महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो KHOE 90.5 FM इन फेयरफील्ड आयोवा।